अनेक रूप खिन माहे अनेक रूप अनेक रूप खिन माहे अनेक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिस नो लाए सच तिस है उधारदा जिस जिस

एक ते आए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए श्लोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिस नो विसरै नाव नानक आन दिन बिलपते जो सुन्यै कर काव महला पंजवा पिरी मिलावा जा थीए साई सुहावी रुत।

पछानिया महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव सलोक महला पंजवा उद्दम करे दया जियो तू कमाव दया सुख पुंच त्याय दया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत महला पंजवा सोब चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता होए ता काहे डर पिया जिस मिल जपिया नाओ तिस जियो अर्पिया आया चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार सब किछ तिस कै वस ना कोई बाहरा सो भगता मन उठा सच समाहरा तेरे दास त्याइन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया सलोक महला पंजवा काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख लेहो प्रभ अपने

0: नाओ नानक बख सीस मन माहे परोवणा सलोक महला पंजवा जीव दया न चेत्यो मुआर लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड न पाक महला पंजवा जीवंदया हर चेत्या मरंदया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आद जुगादी आप रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊणा कही न होए घटे घट सारिया मेहरवान समरथ आपे ही घालिया जिन मन बुठा आप से सदा सुखालिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया गुरपूरे की टेक नानक संभालिया सलोक महला पंजवा आद मद अर अंत परमेसर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया सादा संग अपार अन दिन हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जोनी नह पवै सब किछ करते हाथ कारण जो करै नानक मंगै दान संता धूर तरै महला पंजवा तिसनो महला पंजवा तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिस है दयाल नानक जिस है दयाल बुझाए हुक्म मित जिस है भुलाए आप मार मार मार जम है नित जिस है भुलाए आप मार मार जम है नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खेन टिकन ना दिते प्रभ दास का दुख ना खाव सक है फाड़ पया फाड़ जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मारग मुते दुख लगै बिल लाणिया दुख लगै बिल लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते सलोक महला पंजवा राम जप हो वडभागी हो जल थल पूरन सोए नानक नाम त्याया बिघन ना लागै कोए महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुन्या कर काओ पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निदान जिसनो भालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सूख सहज आनंद वुठे तित घर आवण जान रहे जन्म न तहा मर साहिब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया सुध राग गुजरी भगता की बाणी एक ओंकार सत गुर प्रसाद
1: ए जड़ी पिछली पंक्ति आई सी चाल वास्ते विश्राम गुर प्रसाद नानक नानक ते ठीक लगना जिवें पिछों चाल चली आ रही है गुर प्रसाद नानक सच समाया
0: साहिब सेवक एक एक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया सुध राग गुजरी भगता की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री कबीर जियो का चौपदा घर दूजा दूजा चार पाव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है हर बिन बैल बिराने हुई है फाटे नाकन टूटे कादन कोदो की पुस खई है
2: कोदो को
0: फाटे नाकन
2: है तदा नहीं बन देना कोदो
0: फाटे नाकन टूटे कादन कोदो को पुस खई है रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया अजहो ना पेट अघई है जान भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है दुख सुख करत महाप्रम बुढो अनक जोन परमई है रतन खोयो प्रभ बिसरयो रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरयो एहो अवसर कत पई है भ्रमत फिरत तेलक के कप जियो गात बिन रैन बिहई है कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछोतई है गुजरी घर तीजा मुस मुस रोवै।

तुमरी कृपा ते सब को अपना मन मह यह विचार्यो रहाओ कोट प्राद मिटे तेरी सेवा दर्शन।

0: साध संग बिसारे हो, साधु संग बिदार बिसारे हो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिसारे हो, माया बंध काटे कृपा निध नानक आप उधारे हो, देव गंधारी मन सगल स्यानप रही करन करावन हार स्वामी नानक ओट गही रहाओ, आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अधेरा लही, जान प्रवीण स्वामी प्रभ मेरे शरण तुम्हारी अही, खिन मह थाप उथापन हारे कुदरत कीम ना पही, देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुर प्रसाद काहू जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिन कौ काल ना खाते, रंग तुम्हारा लाल पय है राम नाम रस माते, महाकिल बिख कोट दोख रोगा महाकिल बिख कोट दोख रोगा, प्रभ दृष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया, नानक गुर चरण प्राते देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ जातकत पेखे हो नैनी।
1: हुण इत्थे जिहड़ा सिरलेख आ रहा है, पहला देव गंधारी कला आया सी ते फिर देव गंधारी महला पंजवा, अठवें शब्द का सिरलेख पिछले अंग ते, ते हुण इकला ही देव गंधारी पंजवा वो आ रहा है। ये बारे महापुरख भी टकसाल के सारे ज्ञानी सिंह विद्वान यही आखते ने, जिमें भी लिखा होया है उस तरह ही उच्चारण करना, जी तल कला देव गंधारी लिखा देव गंधारी उच्चारण करो, जे देव गंधारी पंजवा लिखा है पंजवें पातशाह का ही वाचक है, इनू पंजवा ही पढ़ना है, जिथे महला लिखिया महला पढ़ो, जिथे नहीं लिखिया उथे देव गंधारी पंजवा ही उचारण करना ध्यान रखना। हाँ जी,
0: सो प्रभ जात कत पेख्यो नैनी सुखदाई जियन को दाता अमृत जा की बैणी रहाओ, अज्ञान अधेरा संति काटिया जी दान गुर दैणी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी, कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी, कर्म धर्म किश उपज न आयो।

दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिसै सो छारा रहाओ जिन किया तिस सिमर प्राणी जियो प्राण जिन धारा तिसह त्याग।

अगन सागर ते सरन स्वामी की अहिया कोट प्राद महा अकृत कान बहुर बहुर प्रभ सहिया करुणा मै पूर्ण परमेश्वर नानक तिस सरनहिया देवगंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बिनासे उतरे सगल कलेसा रहाओ जन्म जन्म के किल बिख नासा है कोट मज्जन इसनाना नाम निधान गावत गुण गोबिंद लागो सहज ध्याना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोर निरारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे छके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहाराओ करहो अनुग्रह स्वामी मेरे मनते कबहू ना डाराओ रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जाराओ सबते नीच सबते नीच आत्म कर मानाओ मन मह एहो सुख धाराओ सबते नीच आत्म कर मानाओ मन मह एहो सुख धाराओ गुण गावह ठाकुर अविनाशी कलमल सगले झाराओ।

0: दीजै कर संतन का चेरा, कृपा निदान दयाल मोहे।
1: दीजै थोड़ा कस के पढ़ दो, दीजै हो गया
2: सलाम ठीक है।
0: कृपा निदान दयाल मोहे, दीजै कर संतन का चेरा रहाओ, प्रातः काल लागो जन चरनी, निस बासुर दर्श पावो, तन मन अर्प करो जन सेवा, रसना हर गुण गावो, सास सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रहिया, एक आधार नाम धन मोरा, अनद नानक एहो लहिया, राग देव गंधारी महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मीता ऐसे हर जियो पाए, छोड़ ना जाई सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ, मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग ना कतहु जाए, अनक अनक पात बहो पेखे, प्रिय रोम ना समसर लाए, मंदर भाग सोब द्वारे, अनहत रोण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माने, ग्रह प्रिय थीते सद थाए, देव गंधारी पंजवा, दर्शन नाम कौ मन आछै, भ्रम आयो है सगल थान रे, आहे पर्यो संत पाछै, रहाओ किस हो सेवी किस आराधी, जो दिसटै किस हो सेवी किस आराधी, जो दिसटै सो गाछै, साध संगत की सरनी परियै, चरण रेन मन बाछै, जुगत ना जाना गुण नहीं कोई, महा दुतर माया छै, आयो आए पयो आए पयो नानक गुर चरणी, तो उतरी सगल दुराछै, देव गंधारी पंजवा, अमृता प्रिय बचन तुहारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे, सबहु मद निरारे, रहाओ राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदरा, मोहे ठाकुर ही दरसारे, दीन द्वारे आयो ठाकुर, सरन परयो संत हारे, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन सीतल बिगसारे, देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारयो, दीन दयाल पए प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारयो, रहाओ साध संगम गुण गाव है हर के, रतन जन्म नहीं हारयो, प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुलह समूह उधारयो, चरण कमल बसया रिद पीतर, सास गिरास उचारयो, नानक ओट गही जगदीसुर, नानक ओट गही जगदीसुर,
1: थोड़ा उड़ी दा हुड़ा लंबा करके ओट,
0: नानक ओट गही
1: ओट
2: हुड़े दी आवाज मन,
0: नानक ओट गही जगदीसुर, पुनः पुनः बलिहारयो,
1: दोबारे पढ़ियो एक बार, नानक ओट,
0: नानक ओट गही जगदीसुर, पुनः पुनः बलिहारयो, राग देव गंधारी महला पंजवा, घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करत फिरे बन भेख मोहन रहत निरार, रहाओ कथन सुनावन गीत, कथन सुनावन गीत नीके गावन, मन मह धरती।

0: मुलिया कत पाई मन रुचा खोज असंखा अनक तपंथा बिन गुर नहीं पहुचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पुंचा देव गंधारी महला पंजवा मैं बहु बिद पेखियो दूजा नाही री कौ मैं बहु बिद पेखियो दूजा नाही री कौ
1: को थोड़ा लंबा को
0: मैं बहु बिद पेखियो दूजा नाही री कौ खंड दीप सब पीतर रविया पूर रहो सब लो रहाओ अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवै सुन सो चार आश्रम चार बरन्ना मुकत भय सेवतो गुर शबद दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो
1: थोड़े होड़े लंबे कर दो मारे
0: गुर शबद दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो।

0: अजहु नहि समझत सिख दै हार्यो नीत नानक भौजल पार परै जौ गावै प्रभ के गीत।
1: इत्थे हुण ब्रेक कर लैनी आ आप जी जल पानी वरत के फिर हाजिर हो जाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रहे
1: रहे दुलाए जी कली दुलान ही है किसी पोथी बिच दुलाम भी है एक लाई पाठ आ रहा पर लड़ी बार पोथी जी है प्रकाश ओ दो ला कहते छपी हुई है
2: दो ला भी ठीक
1: जो ढुकम है वह कर दी
2: बार तरजीह देवांगे
0: सत सत नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रहै न्यारा अगणत अपार अलख निरंजन जेहे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चित लायो राग बिहागड़ा

जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए तिन के सब दुख गवाया राम अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपे है पाप गवाते राम पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चौहो कुंडी चौहो जुग जाते राम होमे मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हार सार नाते राम होमे मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हार।

जो मनमुख पाप लुभाणे राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदुड़िए हर जप हर नाम समाणे राम सब जाए मिला।

0: नित सब किछ मेरी जिंदुड़िए सो डरै जिन पाप कमत्ते राम जिस अंतर हिरदा सुध है मेरी जिंदुड़िए तेन जन सब डर सुट कत्ते राम।
1: ए जिवें पिछली पंक्ति विच पाठ आया है हर वेखै सुनै नित सब किछ मेरी जिंदड़िए सो डरै जिन पाप कमत्ते राम। कमत्ते पाठ ही शुद्ध है ते शुद्ध ही उच्चारण किया गया है कि भुलेखे दे विच कमते पाठ ना हो जावे इसलिए बेनती की है।
0: हर निरपौ नाम पतीजिया मेरी जिंदुड़िए सब चख मारन दुष्ट कुपत्ते राम। गुरपुरा नानक सेव्या मेरी जिंदुड़िए जिन पैरी आन सब कत्ते राम। सो ऐसा हर नित सेविया मेरी जिंदुड़िए जो सब दू साहेब वड्डा राम। जिनी एक मन एक

मेरा क्या को पूज चढ़ावे, क्या को पूज चढ़ावे, जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे, भाग मस्तक होए जिसकै, तिस गुर नाल सनेहा, जन कह नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजेहा, दह दिस खोजत हम।

स्वामी गुरमुख प्रगट होया, गुरमुख प्रगट होया मिटिया अधेरा दुख नाठा, अम्यो हर रस चोया जहा देखा तहा जहा देखा तहा स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कह नानक सतगुर मिलाया हर पायड़ा घर आए, राग बिहागड़ा महला पंजवा अत प्रीतम मन मोहना काट सोहना प्राण अधारा राम सुंदर सोभा लाल गोपाल दयाल की अपर अपारा राम गोपाल दयाल गोबिंद लालन मिलहो कंत निमाणिया नैन तरसन दर्स परसन नह नींद रैन विहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन भय सगल सीगारा नानक पय अंपै।

0: मना, मूरख मुगद अनाथ चंचल, बालहीन नीच अजाना, बिनवंत नानक सरण तेरी, रख ले हो आवण जाना। साध है सरणी पाइय हर जियो, गुण गाव है हर नीता राम, धूर भगतन की धूर भगतन की, मन तन लगो हर जियो, सब पतित पुनीता राम, पतिता पुनीता हो हे तिन संग, जिन पिधाता पाया नाम राते जीय दाते, नित देहे चढ़ै सवाया, रिद सिद नव निद हर जप, जिनी आत्म जीता
1: बिनवंत,
0: रिद सिद नव निद हर जप, जिनी आत्म जीता, बिनवंत नानक वड भाग पाई है, साध साजन मीता, जिनी सच वणंजिया।

0: जो जन प्रभ स्यो रातिया, एक जन है एक मन है, राम कह संग राम कह रंग मातिया, लग संत चरणी पड़े सरणी, मन तिना ओ माहा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै, सही सच्चे साहा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै, सही सच्चे साहा, नानक सोई सिमरिय हर जियो, जा की कल धारी राम, गुरमुख मनहो ना विसरै हर जियो, करता पुरख मुरारी राम, दुख रोग ना पौ ब्यापै, जिनी हर आराध्या, दुख रोग ना पौ ब्यापै, जिनी हर हर ध्याया, संत प्रसाद तरे पवजल, पूरब लिखिया पाया, वजी वधाई मन शांत आई, वजी वधाई मन शांत आई, मिलिया पुरख अपारी, बिनवंत नानक सिमर हर हर, इच्छ पुन्नी हमारी।
1: बिहाकड़ा महला पंजवा, घर दूजा एक ओंकार, सत नाम गुर प्रसाद, वद सुख रैनड़िए, प्रिय प्रेम लगा, घट दुख नींदड़िए, परसौ सदा पगा, पग धूर बांछाओ, सदा जाचाओ, नाम रस बैरागनी, प्रिय रंग राती, सहज माती, महा दुरमत त्यागनी, गह पूजा लीनी, प्रेम भीनी, मिलन प्रीतम सच मगा, बिरवंत नानक धार कृपा, रहो चरण है संग लगा, मेरी सखी सहेलड़ी हो, प्रभ कै चरण लगा है, मन प्रे प्रेम घना, हर की भगत मंगा है, हर भगत पाई है, प्रभ ते आई है,

पतना कत है बुझै बिन सुअमी सरना राम प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिय अनाथ निर्गुण काश ना जाना मेरा गुण अवगुण।

हारा सो दिन सफल गणया हर प्रभु मिलाया राम सब सुख प्रगटया दुख दूर पराया राम सुख सहज आनंद विनोद सद ही गुण गोपाल नित गाइय भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताइय गह कंठ लाए सहज सुभाए आद अंकुर आया बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतहु ना जाया बिहागड़ा महला पंजवा छंत सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले सह भंजना सरन तेरी रख ले हो मेरी सर्ब मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेरहु ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो का।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया साहे सेती मर वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दों ता गावहो हरि कीरा मन जनी बसाया

दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी।

चार पहर दिन आप जी दे भाणे अंदर सुखां दा बतीत होया है, कोटान कोट शुक्र है। चार पहर रैन आई है अपने भाणे अंदर सुखां दी बतीत करवाउणी,

0: सुकयत है सूरा आत्म जिने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइय आत्म रंग सरनी पावन नाम तिआवना सहज समावन सांगा रहा जन के चरण बस है मेरे हियर संग पुनीता देही जन की धूर देव कृपा निदा नानक कह सक एही जन के चरण बस है मेरे हियर संग पुनीता देही जन की धूर देहो कृपा निदा नानक कै सुख एही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोट महला पंजेवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चो गिरद हमारे राम नाम लागा जम लज्जाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहा नानक प्रभ वनासी ताकि सेवन बिरती जासी आनंद करह तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा बिलावन महला पंजेवा ताती वावना लगई पार ब्रह्म शरणाई जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औ खुद दिया काली मिलाई राम राख लिए ते रखन हार सब ब्याद मिटाई कौ नान कृपा भई प्रभ भय सहाई सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नै छुट है निकट न जाइयो दूत सलोक महला पांजेवा मन मैं चित बो चित बनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानके मीत सोहला राग गौड़ी दीपकी महला पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिया करते का हुई बीचारो तित कर गाव हो सोहला सेवर हो सिजनहारो तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहला ओम वारी जित सोहला सदा सुख हुई रहाओ नित नित जी अड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पावे तिस दाते कमन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल देहो सजन असी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल कर करे हो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन रागा समहला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त हुए सो का राख वडाई तोए राव विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिती वारी माह हुआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के ते वेस रागत नासरी महला पहला गगन मैं थाल रव चम दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय मूल अंत ज्योति कैसी आरती हुए पव खड़ना तेरी आरती अनहता शब्द वाज अंत भेरी रहा सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मुतन नायक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ, ਅਨਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ, ਸਾਕਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵ ਹੈ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸੇ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ। ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान धर के बोलो जी। गरीब नवाज पातशाह आप जी ने अपार बख्शिश की दीवान दी संपूर्णता उपरंत। पावन श्री मुख वाक बख्शिश की आप जी दे सरूप दी टहल सेवा हुई। सोहला साहब जी दी बाणी दा पाठ होया। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या आप जी दी हजूरी विच विचरद्या होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां दी मुआफी बख्शनी। अगे तो समत बख्शिश करनी। इस वक्त सेवादार संगत हाजिर है। आप जी अपने सुंदर आसना उपर विराजमान होके आराम फरमाओ। सेवकां नूं खुशियां बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

देग तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोलो सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

फिरत प्रभ आया परया ताओ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे सगल गुना के दाते स्वामी बिनाओ सुनो एक दीना देहो दर्स नानक बलिहारी जियाड़ा बल बल कीना आस प्यासी पिर कैताई ज्यो चात्रिक बूंदेरे कहो नानक जियाड़ा बलिहारी देहो दर्स प्रभ मेरे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत कसम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा परमेसर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेसर दिता बन्ना

कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विगसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या भाउ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ।

तीरथ नहावा जे तिस भावा विन भाने के नहाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलै लई।

नाहि सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख था परखया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर केता भार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तेस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ माल भख खाहे असंख निंदक सिर कर है भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव पुरमाए तिव तिव पाहे

केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाटत घड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सु

है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति बेभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं पुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं।

उदार सर्ब पालक सर्ब कालक सर्ब को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर।

ताहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन तीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चत्तर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह है के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रचयो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम स्व भरम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग न रंग जाकह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवहि वह चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंदर बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अभा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भर नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानिया चत्तर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाए ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै प्रथिसै अदिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरणै के विभूत करणै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वरणै के सर्बा अपरणै के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्बं कली है के सर्बं दली है के सर्बतर मान्या है के सर्बतर दान्या है के सर्बतर गावना है के सर्बतर पावना है के सर्बतर देसा है के सर्बतर पेसा है के सर्बतर राजा है के सर्बतर साजा है के सर्बतर दीना है के सर्बतर लीना है
के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणाय के सर्वतर प्राणाय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर पानाय के सर्वतर मानाय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फिहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आदरूपे अनाद स्वरूपय अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप हैं अछेज हैं अछूत हैं किनरकं परणास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रयुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रयुगत अनूप हैं चाचरी शांद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अपूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंद हैं अबंध हैं अपगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोत्रय ना पुत्रय ना सत्रय ना मित्रय ना ताताय ना माताय ना जाताय ना पाताय निरसाकं शरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांत हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासुल फिकन हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं
ਕਿ ਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ ਬਿਹੇਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ।

ढीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पर ते पार है करुणाकर है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरं परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्तर चक्रवर्ती चत्तर चक्र भुगते स्वयं पा

जानत। महादेव कव कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपुनी बुद्ध है जिति, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, तेह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज किनी, अंडज जेरज सेतज किनी। उतभुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा। कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता। जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है।

कह सब तू है, जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सोर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी। बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार ताज त्रिसना। बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हुनिकी। एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया। हर वासना समानी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हे तिव चलह, जिन्ना मार्ग पाव हे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरद्वारा सुख पाव हे। कह नानक सच्चे साहिब, ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला। सत गुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वस्या। जिन तुर हो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्लां, गल्ली किनै ना पाया। कह नानक शब्द सोहिला, सत गुरु सुनाया। पवित होए से जना, जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो। पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन धोवहो शब्द लागहो, हर स्यो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै एह सहसा एव जाए। जिया हो मैले बहर हो निर्मल, बहर हो निर्मल जिया हो ता मैले। तिनी जन्म जुवै हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनहु विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम। सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जिया हो निर्मल बहर हो निर्मल, बहर होता निर्मल जिया हो निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ के सोए पहुचै नाही। मनसा सच समानी, जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जिया हो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदै त्याए। अंतर आत्मै समाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनहु संतहु, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछो हो बिबेकी आ जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए।
फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखा होवेन सत गुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सत गुरु के प्यार हो गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारिग पाणी। कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सत गुरु बज होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सत गुरु बज होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलया सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस सेव लिवलाए। कह नानक आप करता पे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोल है अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनो आन दिन हर लिव लागै। जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारिया। मनहु क्यों विसारिया एवड दाता जे अगन मह आहार पहुँचावे। ओसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया। कह नानक एवड दाता सो क्यों मनहु विसारिया। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जे ही करतै खेल रचाया। जा तिस भाना ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़के लगे तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपिया विच हो आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जिया हो लाहा खटे हो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू आन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए।
प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पियै हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कहै नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहै नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया

तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हार तेरा रचन रचया, सो हार मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया, ए नित रहो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो वेस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सत गुर मिलया दिब दृष्ट होई, ए सरवण हो मेरे हो, साचै सुन नैनो पठाए, साचै सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनहो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समाणी, सच अलख वेडानी, ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहो, पवित्र होवा हो, साचै सुन नैनो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया, गुरद्वारा लाए भावनी, इक ना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नाव निद, तिस दा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारै जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, एहो साचा सोहेला साचै घर गावहु, गावहु ता सोहेला घर साचै, जिथै सदा सच त्याव हे, सचो त्याव है जा तुद भाव है, गुरमुख जिना बुझाव हे, एहो सच सबना का खसम है, जिस बक्से सो जान पाव हे। कह नानक सच सोहेला सचै घर गाव हे, अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुन

सत्संग जी अंतर्गत होके सिमरन करना अपने नाम नु सुनना करना जीओ नेत्र बंद रखने जिन्हां गुरमुखां नू शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ।

सर्व कला समरथ डोलन ते रखो हो प्रभु नानक दे कर हथ किव कर अखां किव सालाही क्यों वरनी के बजाना नानक आखण सबको आख है एक दू एक सियाणा कथना कथी न आवे तोटे कथ कथ कथी कोटि कोट कोट न हौ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुग्धा जन्म पया रणबत नानक तिन की सरणा जिन तू नाहीं

सुन साजन हो बिन हर छूटन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरनी पाहे। पवड़ी यैया जतन करत बहु विद्या एक नाम बिन कह लौ सिद्धिया याहू जतन कर होत छुटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरन तारे सबको वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समरथा

साहिब साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा कर शांत सुख मन आए वसिया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्ठो कहे नानक सुन हो संत हो साचा नाम मेरा वाजे पंच शब्द कार सपागे शब्द वाजे पंच दूत तुद वास कीते तुर कर्म पाया तुद जिन कौ कह नानक तह सुख हुआ आनंद सुनो बड़ पागी हो पार भ्रम प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे संत साजन पए सरसे

शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै

जैसे तो सफल बन बिखे बिरखा विविद, जाको फल मीठो खग तापे चल जात है। जैसे पर्वत बिखे देखिए पखान बहो, जामे ते हीरा खोजी खोज खनबारा ललचात है। जैसे तो सफल बन बिखे बिरखा विद, जाको फल मीठो खग तापे चल जात है। जैसे पर्वत बिखे देखिए पखान बहो, जा मैं तो हीरा खोजी खोज खन बारा ललचात है। जैसे तो जलद मद बस्त अनंत जंत, मुक्ता अमोल जा मैं हंस खोज खात है। तैसे चरण सरन है असंख सिख,

सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मन मुख गवाया तुद्या।

मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गले आ रहा, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा।

काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कह नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा, जप तप संजम

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए।

हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तो जुजु करियो हो रक्षा, राख ले हो मुहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, कीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा,

पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा।

आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग।

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मान नीवा, मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सह

बंधन भाई भरम भुला संसारा बिन गुर बंधन टूट है नाही गुरमुख मोख द्वारा कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है मर जन्म है वारो वारा हाँ मेरा जग पलच रहया भाई कोई ना किस ही केरा गुरमुख महल पायन गुण गावन निज घर होए बसेरा एथे बूझे सो आप पछाणे हर प्रभ है तिस केरा सतगुर सदा दयाल है भाई विण भागा क्या पाइए एक नजर कर वेखे सब ऊपर जेहा पाओ तेहा फल पाइए नानक नाम वसै मन अंतर